बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: जमुना का बोल राधा बोल संगम को गाके नहीं हर बोल राधा बोल संगम को गाके नहीं
1: नहीं नहीं।